0: वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
1: आए हैं तो काम भी बताइए,
0: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए। कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता।
2: ना ना ना ना ना
3: कैसे हो किराए।